लड़के वाले आज आ रहे हैं और हम लड़कियां दिखाएंगी कि हम किसी से भी कम नहीं है। म्यूजिक।

लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

लड़के वाले आज आ रहे हैं और हम लड़कियां दिखाएंगे कि हम किसी से भी कम नहीं है। म्यूजिक।